0: बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: अनुरोधक दीप जनपन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचारपछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

थप जानकारी के लागि सम्पर्क नम्बर अध्यक्ष गुरु पुरुषोत्तम केसी 9864000044 कृष्ण थपलिया सचिव 9761881948।

इता मिता सुतरा जना तना धना नारी गोठरा खेत पशु घर बारी सबई जाही का ताही रहने छन तिमी कनाए मले खैचिलिने छन भजनारायण भजनारायण भजनारायण सजन हो।

केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गर दर्शन प्रभु करुण छलिला उनको चल चोर प्रभु विषय अरुका कुनै को।